और मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिखे मामन अगर दुखदर समाय वाय खुरियो बाल मा